मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करना है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट

सिमरन करद्या दुखां दा भार उठ गया, जिवें शरीर हलका उठदा जा रहा, शरीर उठदा जा रहा, शरीर आकाश वल नहीं, आकाश वल नहीं। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

अंदर बोल दिए, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, जिमें कह लो खामोश आवाज। वो आवाज जिहड़ी एक कन नहीं सुन दे, जप रहे हो ते एहसास कर रहे हो कि शरीर दे अंदर गूंज हो रही। सूक्ष्म सिमरन सूक्ष्म हो गया, सिमरन हौली हो गया लेकिन अंदरों पावर बढ़ गई।

टांग बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गए, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीभ। हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीभ नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसती, अंदर उन्हां नाड़ां विच धड़कन हो रही है।

जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास।

तन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तू शहनशाहों का शहनशाह है। तेरे समान संसार विच

सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता, और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है। सात जगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एक दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु का खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हैं तू उन्हां नूं वंडन वाला है। सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं ए धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नूं जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार नूं छड़ के तेरे चरणां विच आया।

देख रहा पता गुरु गोविंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोविंद सिंह। धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। तेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया के ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु के पाने मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया, ते साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुना। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तो कितने दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति होई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख के चरणों में शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते, दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख के चरणों के नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ए सौदा सस्ता किया। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नु शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने। आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी, हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। इन्हां सिखां दे उपरों धर्म दी रक्षा दी खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म दी खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ए अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ए दुश्मना दे कई दलां दे दल मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनु रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री। अनेकां नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगा लंघ गए। दुश्मन केरे ने तोड़ छड़िया, तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है। यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए भाई साहब भाई नंद लाल जी

को पायो तिन तिन अपनो राज लायो जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन तिन अपनो राज लायो तिन तिन अपनो राज लायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नूं आज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गलबात होई तां मैं संसार दे अंदर अवतार धारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्टरी दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई किन्ने राजे महाराजे आए किन्ना वंश विचों जन्म लैंदिया होया साडी ए सोडी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह ने

कहंदे रब अकाल पुरख महाराज अपनी लीला अंदर बैठा होया ते कन अंदर उंगल मारी है। हिंदू मत अनुसार कन अंदर उंगल मारी है ते गरीब नूं आज सचे पातशाह कहंदे भी थोड़ी मैल निकली कन दी,

बासन तने दर्ख की न तहाई नवासन घने बर्ख की न तहाई नवासन लवी जित गए ते कुशी हार गए कुशी जड़े ने कांशी विच आगे बह गए कुशियां ने कांशी दे विच आके बेदरत याद कीते वेदां दा पाठ सुन सुन के पढ़ पढ़ के ए फिर कांशी विचों जदों महान पंडित बन गए ना इन्हां दा नाम पै गया बेदी ते लवी बंस वालियां दा नाम पै गया सोढ़ी ए सोढ़ी ते बेदी बेदी वंश चों गुरु नानक देव जी महाराज ने अवतार धारिया ते सोढ़ी वंश विचों साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अवतार धारिया कहिंदे वी बेदियां दा ते सोढ़ियां दा मिलाप हो गया बड़े पंडित बन गए महान विद्वान इन्हां ने आके वेद दियां रिचां उपांगां उच्चारण कीतियां इस राज दे अंदर ते लवी बड़ा प्रसन्न होया कहण लगा तू कौन है कहिंदा मैं तेरा भरा जिसने मार के भजाया सी तू मार के भजाया सी ना मैं ओ हां कहण लगा मैं तेरे वेदां नूं सुन के बड़ा प्रसन्न होया तू ब्रह्म दी ज्ञानता प्राप्त कर चुका तैनू मैं राज भाग सौंप दिता अज तो ए साडा राज भाग तेरे हवाले कर दिता जिन बेद पठेओ सो बेदी कहायो तैन धर्म का कर्म नीके चलायो ते वेद पढ़न दे नाल ते सुनन दे नाल सारे दा सारा राज भाग महाराज बेदी ने बेदियां नूं दे दिता लवियां ने ते बेदी कहण लगे भी महाराज तुसी वड्डे भराता हो सानू हुण तुसी राज दे दिता ए साडे सिर उपर एक करजा है ते असीं ये राज तुहाडे वापस देना ही देना तुहाडे हवाले तुहाडी अमानत करनी ही करनी है फिर कदों करिए ते बेदी कहण लगे भाई पहले जन्म ते असीं आवांगे गुरु नानक दा रूप धारण करके साडी वंश विचों उत्पन्न होणगे पहला दूजा तीजा वंश जदों चल पाएगा ना ते चौथे जन्म दे अंदर जदों गुरु होवांगे गुरु रामदास दे नाम दे नाल तेरा प्रकाश होएगा लाहौर शहर दे अंदर तेरा नाम होएगा रामदास चौथे जन्म विच आके तैनू असी दित्ती होई अमानत वापस कर देंगे तैनू गुरु थापना कर देंगे गुरु थाप के तैनू संसार दे विच दित्ती होई अमानत तेरे हवाले कर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी वड्डी ये विचित्र नाटक है बड़ी महान रचना है समय दे अंदर पूरी नहीं होंदी ये जिहड़ी वार्ता दो ढाई घंटे की लंबी वार्ता है इस करके साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह महाराज कहिंदे इथों तक अकाल पुरख महाराज दे चरणा दे विच बिने होई उन्हां दे सामने ए वाक होया ते अकाल पुरख ने सारी दी सारी वार्ता सुना दित्ती भई हुण तैनू संसार विच अवतार लैणा पैणा ना तू पत्थरां नूं पूजक होएगा कहो प्रभु सुभाख हो मैं महाराज अकाल पुरख नूं कहा की कहा किसू ना कान रख हो किसू ना भेख बीज हो अलेख बीज बीज हो मैं किसे दे भेख विच नहीं भेजांगा पत्थरां दी पूजा नहीं करांगा महाराज तेरे पंथ नूं तेरे वंश नूं संसार विच उत्पन्न करांगा उसका नाम होएगा खालसा ए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वाक कीता ए जिहड़ा नाराज छंद जिहड़ा लिखिया होया आप जी दे पास गरीब नवाज साहब सचे पातशाह महाराज कहिंदे ए अकाल पुरख दे सामने एक मैं प्रोमिस कीता है ओह मैं पूरा कर रहा ते खालसा बना रहा खालसा संपूर्ण होके पत्थरां दी पूजा नहीं करेगा जटा जड़ी है सिर ते नहीं बनाएगा किसे अकाल पुरख महाराज नूं छड़ के किसे होर दी पूजा विच नहीं रुझेगा ए मेरे खालसे दे प्रति मेरी एक बिनय है जिवें मैं अपने अकाल पुरख दे चरणा च एक बिनय कीती सी लिख दें।

ने असिस्ट स्टेशन पर ही दिया। एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कहीं सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता है।

सिंह जी महाराज इकले ही आनंदपुर साहब नूं वापस मुड़ पाए। उधर दुश्मन भजा जा रहे, तीन चार मील दुश्मन भजदा गया, पर अगे जाके ओ दुश्मन डट के खलो गया, क्योंकि जेड़ी फौज 3-4 हजार ओ पिछा छड़ के आए सन ओ उथे खलोती हुई सी। दुश्मन डट के लड़न लग पया, अगे ते सिंह दुश्मन नु भजांदे आ रहे सन, ते हुण सिंघां दा पैर पिछे पैण लग पया। जदों पैर पिछे पया तां ख्याल आया कि गुरु किथे, पिछा मुड़ के देखिया पर दूर दूर तक गुरु साहिबां दा कोई पता नहीं। हुण दिल होर टुट गए, जित दी खुशी विच गुरु दा कहिया नहीं मन्निया, गुरु साथ छड़ के चला गया। जे गुरु वापस ना आया असी कदी भी जित नहीं सकदे, और गुरु तो बगैर असी कुछ भी नहीं। फैसला करके 5 घोड़सवार पजाए, जाओ गुरु नु मोड़ के लियाओ। घोड़सवार भजे, नौरंग सिंह घोड़ा पजा के गुरु साहिबां तो अगे निकल गया। परिक्रमा कीती, घोड़ा पजांदे होए ने घोड़े तो काली नाल छाल मारी, अते उची सारी नीले घोड़े रखिया। ओ नीले आ, तेन 100 बाजां वाले दी जे एक कदम भी तू अगे पुटिया। गुरु दी सौ सुनी, नीला घोड़ा उथे रुक गया। नरंग सिंह ने गुरु साहिबां दे चरणा ते सिर रखिया ते कहा, पातशाह जित दी खुशी विच तेनू भुल गए, पर हुण पता लगा तेरे बगैर असी कुछ भी नहीं। साहिबां ने घोड़ा उसे वेले वापस मोड़ लिया और हवा दी तरह घोड़ा पजाया। उड़दी धूड़ विच कलगी दी लिशक सिंघां ने देखी, लालियां चढ़ गईयां, आ गया बाजा वाला, आ गया साडा कलगियां वाला, हौसले वधे। ऐसी साहिबां ने तीरां दी मार मारी, देखदियां देखदियां दुश्मन दा नाश होया, गुरु साहिबां दी जित हुई। हुण सारे सिंघां ने गुरु साहिबां कोल खिमा मंगी, तां साहिबां ने इक गल कही, सिंघो इक गल याद रखो, एक दी आग्या मन्नोगे, एक दे पिछे चलोगे, एक अकाल पुरख दी ओट रखोगे, ते दुनिया दी कोई ताकत तुहानू हरा नहीं सकेगी। अगर तुसी सारे वखरे वखरे राह बना के चलोगे, ते फिर याद रखो मैं तुहाडा कदी भी साथ नहीं देवांगा। क्यों? मैनू सिख प्यारा नहीं, मैनू रहत प्यारी है। असूल प्यारे ने, ते जिहदे असूल नहीं, जिहड़ा रहत विच पक्का नहीं, ओहदा ते मेरा संबंध कोई नहीं। अज सिखां दा इसे वास्ते ए हाल है, कई दल कई आगू कई राह, पर गुरु साहिबां दा फैसला है, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जदू तक सिख सचमुच सिख बनेगा, खालसा बनेगा, मैं साथ देवांगा। ते जेड़ा सच विच नहीं, जेड़ा रहत विच नहीं, ओदा मैं कदी साथ नहीं देवांगा। आओ गुरु दे उपदेश ते चलिए, चढ़दी कला विच रहिए, अणख नाल जीविए, ताकि दुनिया विच आया साडा सफला होवे। साहिबां ने कहा कि मैं आप भी उस परमेश्वर दा भेजा होया आया हां, और सिख हूं अपने ही मन को, ए लालच हों गुण तोय उचरो, जब आव की औध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो। मैं लड़ना है जुल्म के खिलाफ, और मेरा सिख हमेशा

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नूं उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी नौ इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करन वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करन वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिकर नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा बचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसां गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं बीड़ां भी इन्नियां बन गईआं ने जिन्नियां दसां पातशाहीआं तों रल के भी नहीं बणीआं। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आंदा है कि जदों किसे स्याणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरमत दी गलबात होवे तां फिर अंदरों लज्जा आंदी है कोठी कंबदी है ते लर्जा आंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस तों भी अनंत गुणा होवन तां भी थोड़ा है। कीर्तनी वीर जत्थे प्रचारक ते कलम दे तनी व्याख्याकार कर कर होण जरूरत है लेकिन इस दे नाल सारे ही असां अपनी अपनी जगह ये फिक्र रखिए कि गुरु महाराज जी आप किहो जिहा जीवन जी के सानू सदियां तक साडे सामने काया पलट के आए जुगत ओहियो रखी जोत ओहियो रही काया पलटा के समय दी लोड़ अनुसार जलवा नमा होए प्रगट होए जहूर होया जाहर होए अवतार तारिया औतरे ते उन्होंने सदियां साडे सामने जी के दसिया ग्रस्ती सन कोई तारकुल दुनिया नहीं सन रिश्तेदारां वाले सन साडे वांगो कारोबार वाले सन साडे वांगो पर इउं दुनिया विच रह के पानी विच रह के किवें निर्लेप रहे ने। पानी तो मुराद है माया बहुरंगी माया अनेका रूपां वाली माया जिन्हें वड्या वड्या नूं छलिया पर किवें इस नूं छलिया गुरु साहिबान जी ने ते ओहदे प्यारे महापुरशां भगतां संत जना भगौतियां ने।
ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸਰੁੱਤ ਕਬ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਹਿੱਤ ਲਈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ, ਰਾਹਬਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਵਨ 239 ਵਰੇ ਯਕੇ ਬਾਦ ਦੀਗਰੇ ਜੋ ਦੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਹ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬਾਗ ਸਤਾ ਪਲਟ ਜੋ ਦੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਹ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਅੰਨ ਤਿਆਗੀ, ਵੈਰਾਗੀ, ਸ਼ੈਵੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਾਰਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਤੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਰੂਪ ਕਰਦੇ ਸਨ।

अत कल्याणकारी अत सुखदाई अत खुश जायका अत मिठे उपदेश दास की रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे भी चंगा ही है रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने आ गई अपना बोले आप सुने।

संसार दा आना जाना तो बने पर इस आउन तो बाद जान दे समय नवेड़ा सच ते होना है। सदा रहने वाले वाहिगुरु अकाल पुरख असि रोज पढ़ने कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार क्योंकि रहना जो नहीं जेड़ा अज है कल नहीं होगा जो अज तो 100-200 वरे पहला सी ओदे बारे पढ़ते सुनते हैं कदे यकीन आउंदा कदे नहीं आउंदा और बहुत कुछ ऐसा भी है जिदे बारे लिखिया भी नहीं गया असी कुछ सुनते भी नहीं कुछ कह भी नहीं सकते बहुत कुछ संसार ते ऐसा ही होया जिदी कोई निशानी बाकी नहीं है जिदी निशानी भी कोई नहीं जिक्र भी कोई नहीं उन्हूं सच कवे कहोगे और होर चार दिनां नूं जिहड़ियां निशानियां साडे कोल पिछले इतिहास दीआं कायम ने हो सकदा है ना रहण आउण वाला युग जिस वेले असीं गल्लां करिए कहण इह झूठ है इह मन्नण विच नहीं आउंदा जो कल सी अज झूठ हो गया जो अज है कल झूठ हो जाएगा ओदे बारे धन गुरु नानक कहिंदे ने कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए फार कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार गलत हो गया काम कूड़ नाल मोह पा लिया कूड़ नाल नेह पा लिया जो रहण वाला सच सी ओदी संभाल मैं कीती ओनू चेते ना कीता विसरिया करतार महाराज सचेत कराउंदे ने किस नाल की चाहे दोस्ती जो तुर गया ओदे नाल दोस्ती कि जो रहना है जो है मौजूद है जिसने अगे भी रहना ओदे नाल प्यार के जो तुर गया ओदे नाल प्यार जो छड़ गया ओदे नाल प्यार अज एक छड़ गया और जो छड़ गया है ना एक इशारा कुछ संकेत दे गया एक महापुरुष ने बड़ी प्यारी गल कही वो कहिंदा हर बच्चा जो माता दे गर्भ तो जन्म लैंदा है एक सूचना लै के पैदा हुंदा है कि मैं मरन वास्ते आया वरे गंढां बीतदियां जांदियां ने दिन बीतदे जांदे ने बच्चा वड्डा हो रहा है लेकिन कबीर जी कहिंदे ने दूजे पासों भी गिणदा उधरों भी वेख लै जननी जानत सुत वड्डा हो तां मां कहिंदी पुत्र वड्डा हो रहा है पर कबीर दीआं अखां होर पासों वेखदियां ओ कहिंदे ने इतना को ना जाने जे दिन दिन औध घटत है ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਆਯੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਓਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਰਨਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਣ ਹੈ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕੱਛ ਬੰਦ ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਏ ਜਾ ਆਏ ਪਰੇ ਜਾ ਫੰਦ ਬਾਲੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਉਧਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ